सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरही तिन हुए ना आपै। एक सती कहावै है तिन बहुत कल पावै। हम हर राखे लग सतगुरु पावै। तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सबाय। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे।

दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सी।

ही वक वक परमावे, घर की नायक घर वास ना देवे, जतन करूं पुरजाई परेवे, रहाव तुरकी भेजी।

दुए मनुख पहचावो। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान साध कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जहो पिरह शिंगारी थिर सोहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर

चलताई। जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पीखत रहे अगाए, जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

सिर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे, नाले लए सदावे, अनहुंदा अजगर भार उठाए।

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी रैण पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी ब्रह्म भ्रम रोवै हाथ पछोड़ी।

गुर केर पाते एह माते आवे, जन नानक हर कै अंक सुमावे। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ता एहो मन लाई।

सुखन दान अमृत सार साधे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे न खुट न जाए। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना किन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी। काची पाकी बाड परानी जो जन्मे सो जानहु मुआ। गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ दिन ते सर पर पौसी रात। रैन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे। गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाई है नीत। मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवां नौ निद तेरा।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार।

रहाउ। तृप्त अगावन साक्य नाय, अठसठ मज्जन संत पुराय, सब मैं जानो करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा, बुद्ध परगास पई मत पूरी, तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़त कोर अंधकूप में है।

गुर पूरै प्रगट मार्ग दिखाया, जाप ताप काश उकत ना मोरी, गुर नानक सरनागत तोरी।

ही ब्योहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पई प्राप्त मालुख देवरिया गोविंद मिण की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

सा बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास ग्रासा रहाउ राख राख शरण प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छडाई प्रीतम सिंह मेरो मन मानिया।

आप सहाय गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्यवा सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावे है किलविख जाही सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

आद संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारी। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोबन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दरब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बह आनी। आगे दरगह काम ना आवै छोड़ चले अभमानी। काहे एक बिना चित लाइय उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने। अपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवां महला पंजवां

जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहा सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगे ठौर ना

बाहर कोई अंतर मन मैला दोए ठहरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा बरमी मारी साफ ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र को।

कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी पंच जना ले वसगत राखे मन मह इकंकारी तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

नावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुरे आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागे।

मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाई सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाई है।

नानक सद बलिहारी आसा महला पंजवा जा तू साहिब ता भउ के आ हौ तुद बिन किस सलाही एक तू ता सब किश है।

मन की होर किस पै आख सुनाइए, बिन नावे सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाइए।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाई है पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां, जहां पठाव हो तह तह जाई।

उठत बैठत सोवत त्याय मार्ग चलत हरे हर गाय श्रवन सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग मन सगले लथा रहा कार्ज काम बाट घाट जपीज गुर प्रसाद हर अमृत पीज दिन सरैन हर कीर्तन गाइय सो जन जम की वाट ना पाइय आठ पहर जिस विसरह नाही गत होए नानक तिस लग पा।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सच शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुन गावो, संत प्रताप साध कै संगी, हर हर नाम त्यावो रे रहाओ, सगल समगरी जा कै सूत परोई, कट कट अंतर रव्या सोई, ओपत परलोखिन मैं करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, कर्ण कराम ने अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आसा महला पंजवा, कोट जन्म के रहे पवारे, दलब देह जीती नहीं हारे, किल बिख बनासे दुख दर्द दूर, पये पनीत संतन की तूर रहाव, प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस भेटे

ऐ मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा, प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा, सतगुर अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे। बिन

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखो एकै ओही, घट घट अंतर आपे सोई रहाउ, आपे सूर किरण बिसथार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापै नाउ, दोह मिल एकै की नो ठाउ, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, आनंद रूप सब नैन अलोया, आसा मोहल्ला पंजवा, मुक्त सियानप किशु ना जाना।

हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत पहे दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा।

पंजवा जिसका सब किस तिसका होए तिस जन लेप ना व्यापै कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करै सोई पा।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरत संसारा, नरक सुर्ग फिर

जानी, भोर पया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, तांते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे,

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई। सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत। कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया। काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सो थान मूड निश्चल कर पाया।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

गर्व मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार संग भूले।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़े ना ही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां आठ पहर निकट कर जाने।

सुनो मेरे भाई, वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हारा।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जा

सूख सहज मेरा धन सोहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवा, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे

का पकड़ हम राखा। आसा मोहल्ला पंजवा सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी। ईहा ऊहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए। कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ। संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर। जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई, रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवां, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाइय साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाइय, सास सास सो गुण निद गाइय, दूर ना होई कतहूं जाइय, नदर करे ता हर हर पाइय, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास, आसा महला पंजवां, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बाणी रसना चाखे वड्डे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला।

गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कह मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु।

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैण पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया भरपूर सच्चा।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

हर नाम मजीठै रंग री त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राए री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई

हम शूटे अब उना ते होए हम ते शूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम पै बिन से भ्रम मोह गए को दिसै ना बिया नानक राखे।

सर्व सुख पावों आज्ञा पावों के ना पावों। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवा अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो हो जन नानक हर सरनई।

गंधण वहन सुनह उर्जावह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पर तन पर तन परती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच धर्म स्यो रुच नहीं आवै सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पलखिन सीजे अर जादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ धंद दुर्गम दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाटे बहुर बहुर जन माते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे कहो नानक दिन रैन त्यावो मार काढ़ी सगले अपादे इउ जपियो भाई पुरख बधाते भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवै, आसा घर ग्यारवा महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावै बहु बिद। जैसा है ओह तै सारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुख नाही परवे सारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर आनी तारी, साध संग मिल हर गुण गाय। एहो जन्म पदार्थ जी तारी, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी। कहो हो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी। गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज भी।

आसा महला पंजवां धुपदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहु मन त्रिपताना बहुर न कतहु तावो रे हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहण दिन।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना।

हमारी प्यारी अमृत तारी गुरु निमुख न मनते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सिंह।

महा भौजन लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिव लाओ रहाओ वेद शास्त्र जानते।

डोल महा दुख पाया, बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस, पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत, सास सास त्याय।

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यों ज्यों राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नासे। हर नानक सदा हजूर आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता।

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवां, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कटांब बिखै रस माते, मिथिया गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याव हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईए सर्व फल पाईए सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हों।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवा घर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जिहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्यावं भ्रम पीत जीत मटावं निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै तां सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला त्रे भवन सूजै आप गवावै बाणी बूझै सच समावै शब्द विचारे एक लिव तारा नानक धन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मानिए सच सुरत बखान कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार लेख असंख अलेख या

जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन को।

दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौं बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आपने।

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन ते मन ती।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

क्या लहस निदान, जिस कायन तन सहज ना जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल फाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे से वड भागे, नानक गुर की चरणी लागे, आसा महला पहला, गावह गीते चीत अनीते, राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो करे, गुरमुख राम नाम त्रिपतासे, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नावन साच पछाणे, अंतर की गत गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

शब्द ना पछाण है, गुरमुख निर्मल नाम वखाण है। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास। किलविख दुख काटे हर नाम परगास, कर विचार आचार पराता। सतगुर बचनी एको जाता, नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना। बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे। गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हौमै कौरा। रहाओ इहो मन मुगद।

अपने वस किए हौमे ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाओ धुन होई एहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब आद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के

तू आप भुलावह नाम विसार, तू आपे राखह कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा, गुरबिन परम जपह जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, कट कट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: दुख तिस लागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

साहा संचह धन जाए बिन हर भगत ना पवी थाए बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिरसै मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राके बंध ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदियां।

घर दर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामन, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, हो या शाई माई, इस जर कारण कणी विगुत्ती, इन जर कणी खोआई, पापा बाजो हो

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

बख्शनहार शब्द कमावही। नानक मंगै सच गुरमुख कालिया, मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहाली है। आसा मोहल्ला पहला, क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला सच टिकै घर आए।

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई है हर नाम ना लेवे ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आखी है वेखे वडे आई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गया उल गी हम छोरू थारी ज्यो त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचों दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखे वड्याई गुरमुख होए निहाली है इयों कीमत पाई जीवंदियां लाहा मिले गुरकार कमावे पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे मनमुख तोटा नित है परम है परमाए मनमुख अंध ना चेतई क्यों दर्शन पाई तां जग आया जानिए साचै लिव लाई गुर भेटे पारस पहे ज्योति ज्योत मलाए ऐनस रह निरालमो कार तुरकी करनी नानक नाम संतोखिया राते हर चरनी आसा महला पहला केता आखण आखी है ता के अंत ना जाना मैं धरया धर एक तू मैं तान सताना नानक की अरदास है सच नाम सुहेला आप गया सूजी पई गुर शब्दी मेला रहाऊ हों मैं गर्भ गवाई है पाईए विचार साहिब स्यो मन मानिया दे साच आधार अहनस नाम संतोखिया सेवा सच साई ताको बिघन ना लाग गई।

ठान है, नित नित खरा संभाली है, सच सौदा पाई है, खोटे नदर ना आमनी, ले अगन जलाई है, जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है, फल अमृत होई, अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम ना भेद है, हर रसन रसाई, हुक्म संजोगी।

नाम अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे आणी चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताका हुक्म न बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगह जुगह के राजे किए गाव है कर अवतारी तिन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा।

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमै मार, हर जपिया पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई,

बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक हो है सो ले पाई रतन विचारा अंदर खोले दिब दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मान चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरै वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है।

दिए, आज्ञा जुग जुग प्रगट होए, ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूढ़ी बाणी जे रपै ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ। हम नीच मैले अत अभमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए, निर्मल जोत अपार। बिन गुर कोए ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कह पै पाए जो रते, सिफती सच समाओ। पै बिन लाग ना लगई, ना मन निर्मल होए, बिन पै कर्म कमावणी, झूठे ठाउ ना कोए। जिसनो आपे रंगे सो रपसी, सत संगत मिलाए, पूरे गुर ते सत संगत उपजे, सहजे सच सुभाए। बिन संगती सब ऐसे रह, जैसे पास ढोर, जिन कीते तिसे ना जाननी, बिन नावे सब चोर। एक गुण विहाज है, औगण विकण है, गुर कै सहज सुभाए।

ठीक है। बहुविद श्रेष्ट उपाई हुक्मी कार कराईंदा, दूजा किस कही है भाई, बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार, एक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड्डे कूड़े आर, एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चा शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए, नदर करे जिस आपनी तिस नु भावनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए, इहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी।

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यों लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाई सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाई मन सदा हरियावला सहजी हर गुण गाए रहाऊ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयु जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जमे सच नाम वापार जो इत ला है लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार अन दिन रावै फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना बिटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह बिचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हो मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुना बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखिया जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जां प्रभ मेले सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह फिरे अपना सच्चा नाम सुख पाया हे मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई। रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई। बिन कर्मा किश पाई नाही क्या कर कहया जाई। आप पछाण है शब्द मर है मनहु ताज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाई। इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करहे श्रृंगार। पन दिन सदा जलदियां फिरहे सेजे रवै ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी शिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई। मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जमहै पी मरह जमदर होए खुआर। आप मलाइन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाणे मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवां अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाउ साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर।

चरण कमल बोहित भय लग सागर तरियो ते भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ सियो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद भावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माई काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई जो जन राते राम स्यों प्यारी अनत ना काहू जाई हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाई अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाही जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर के करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारे। तुर मस्तक लेख लखाय, एको आप वर्तदा प्यारी, घट घट रहिया समाय। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नानक हर सरनाय। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सस्य सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया। सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया।

मुंद जोबन बालड़िए मेरा फिर रली आला राम तन फिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन फिर मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी सीजा सुहावी संग फिर कै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुनो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन फिर आगे शब्द सुभागे घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतुराईए भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजे रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लिखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनो सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी राम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई।

आद पुरुष अपरम्परु तारी नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोडो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा।

जनहार जीव सबना का दाता कर्म विदाता दुख बसारन हार जीव दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका हुवै कोट कुटंतर पापा केरे एक करी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जिते हों जाई साचा सिरजनहार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तन्दै लाया हौ तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो तिन फल तोट ना आवै जां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहे से सूकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

साधु आसा महला तीजा संत घर पहला हम घरे साचा सुहला साचे शब्द सुहाया राम धन पिर मेल भया प्रभ आप मलाया राम प्रभ आप मलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द शिंगारी सच सुवारी सदा रावे रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कहो नानक गुर शब्द सुवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़ै कामण भरम भुली हर वर ना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मनमुख अयाणी अवगुणवंती झूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुपाए नानक बिन नावै कामण परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुर मेल मलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारी राम शब्द अपारे मिले प्यारी सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जा फिर रावी मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा त्याई सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कारज सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर तीजा।

तू बैराग कर किस दिखावह, हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावह। कर बैराग तू छोड़ पाखंड, सो सहो सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई, गुरमुख हुक्म पछाणे। जिन हुक्म पछाणे।

सतगुर मिले तावत थम्या निज कर वसिया आई नाम विहाजे नाम लई नाम रहे समाई तावत थम्या सतगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज धुनि उपजै जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहे आसमाई यूं कह नानक सतगुर मिले है तावत थम्या निज

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जा तिस भाणा गुण प्रगट होए, सतगुर आप सवारी, से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़िया, दुतिया भाउ चुकाया, इयों कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चेते आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पलाए,

वसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजे है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचह भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

राम नाम वसै, किन किंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले, मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया, राम नाम ते आया। राम नाम गुण गाई, दुर्मत कुबुद गई सुध हुई। राम नाम मन लाई, सफल जन्म शरीर सब हुआ। जित राम नाम परगासिया, नानक हर पज सदा दिन राती। गुरमुख निज घर वासिया, जिन शरदा राम नाम लगी। तिन दूजे चेतना लाया राम, जे धरती सब कंचन कर दीजे। बिन नाम है अवर ना पाया राम, राम नाम मन पाया, परम सुख पाया।

भी उत्तम। हर जपी है सतगुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो। हर हर नाम जपया दुख बिनसिया, हर नाम परम सुख पाया। सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेर गवाया। हर हर नाम तिन्नी अरादिया, जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कल जुगी उत्तम, हर जपी है सतगुर पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, भ्रम चूका आवन जान जियो। आवन जाना भ्रम पौ भागा, हर हर हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया। से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधु, मन चूका सोग वजोग जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना।

मन तन हर गाव है परम सुख पाव है हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ शोभा गुरमुख हुई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर ना कोई हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सत जुग सब संतोख सरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हृदय क्रोध जलाए दियो मन हृदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हों मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए दियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए।

हैं जग पुन आरंभ है। हत किरिया कर्म कमाए दियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए दियो। महाजुद जोद बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए दियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कढ लेवो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

जियो जग उपजै बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो। तां की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहे दिन रात।

मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू शरण हर नाम की। हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

रस भिन्नी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मन्नी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बन जे है गुर साहु सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तुदै साजिया।

आई। आसा महला चौथा, इन मस्तक तुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिले आ राम राजी, अज्ञान अंधेरा कटे।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है। ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहर हूं भुल चुक बोल दे। पी खरे हर पानी,

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल पाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर हर होया।

सुख सद हुई, जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ह मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा।

रुते फिर बाजड़े हो मेरे प्यारे आंगन धूड़ लुते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुते गुरु नानक।

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर टुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु।

सहज भया ग्रहवास आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आगाने अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियों मन।

सोहे बंक द्वारी नव निदे नौ निदे मेरे घर मह आई राम सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

सरसे अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

0: हर रंग माणी
1: हर संता हर संत सज्जन
0: मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम। सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता। गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम। हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे। मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरन तरिये अपने प्रभ पावा। आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे। मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे। हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे। गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे। प्रियो सहज सुपाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा। हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा। ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजे। गुरपूरै अपदेसिया जीवन गत पाते राम राजे। जीवन गत स्वामी अंतर जामी

जल संग राती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हरसियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चित व्यास घनी कद दिन यर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी है। हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। अब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिन यर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चराणी।

नानक बेटे साध जब हर पाया मन माहे संत जान को खोजह असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराध ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ अराधते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत हुए गते कोट बिसन अवतार संकर जटा तार चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी आसा महला पंजवा सलोक उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवह दुख दर्द भ्रम जाय संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई भेटत साधु संग जमपुर नह जाई दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है पावन पतत पनीत नाम निरंजना परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल फल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दै वसिया मिटे तिसै वसूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरे सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोज।

सहज सुभाई भगत कारज सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जंपै भगत वचल हर बिरद आप बनाया हासा।

अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावै नानक वखाण गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ताकै आनंद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताज आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया। समर्थ अगत अपार निर्मल, सुनो स्वामी बिनो एहो, कर

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल धर्म कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत न

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगंत आयु बहु परदेसह धायु अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायु राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

महल्ला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपव पये पराण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भय राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोहो बेकार बिनसे जोन आवन सब रहे अगन सागर भय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरले किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमण निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रह नड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो ताज मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखागामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां कुछ है कहो कंत नी छाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत भाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या तन पसम टेरी जमै हेरी काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी रहे ओ पैनन खाया नानक कमाणा संग जुलिया नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये नित पाप कमायन पापा कमाणे छड़ह नाही लै चले कत गलाविया हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी तरण देहला भया खिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई गणत नाही की आय अपना पायु गुजा कमाणा प्रगट होवा ईत उतह खुआरी नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत तराया।

हुआ पन्नड़ा, प्रभ संग सोहंती संगे सोहंती कंत स्वामी, दिन सरैनी रावी है सास सास चतार जीवा, प्रभ पेख हर गुण गावी है, बिरहा लज्जाया दर्स पाया, अम्यों दृष्ट सचंती बिनवंत नानक मेरी इच पुनी, मिले जिस खोजंती नस वंजो हो किल विखो हो, करता घर आया दूत है दहन भया, गोविंद प्रगटाया।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निद सिद चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने कर धारम।

माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथे संग देखे करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी पाज साध संगत सदा नानक मिट हैं दोख कमाते वलवंच कर उदर पर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा।

आया। जल थल मही अलरवया स्वामी, ऊच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की, चरण कमल अधारा, एक हर चंदौरड़ी, अस्त्र किस नाही, माया रंग जेते से संग ना जाही, हर संग साथी सदा तेरे, दिन सरहन संभाली है, हर एक बिन काशे अवर नाही, पावो दुतिया जाली है, मीत जोबन माल सर्बस, प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत नानक।

कमला भ्रम पीत, कमला भ्रम पीत हे, तीखण मद विपरीत हे, अवध अकारत जात, गहबर बन कोर, गहबर बन कोर हे, ग्रह मूसत मन चोर हे, दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन, मिलो प्रभ करुणा पते, जन्म मरण अनेक बीते, प्रिय संग बिन कछ नह गते, कुल रूप धूप ज्ञान हीनी, तुझ बिना मोहे कमन मात, कर जोड़ नानक सरण आयो, प्रिय नाथ नरहर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद बचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सत

स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो हो नाम देव हो दृष्ट तार्थ मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श

उगवह सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबेन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी माने।

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग।

खाणी, विस्माद धरती विस्माद खाणी, विस्माद साद लगे है पराणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग, विस्माद भुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाह, विस्माद उजड़ विस्माद राह, विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देख हाजरा हजूर, वेख वडान रहया विस्माद, नानक बुझण पूरे भाग, महला पहला, कुदरत दिसे कुदरत सुनिए, कुदरत पौ सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत

काल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जित तन पाई है नानका से तन हो है शार ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है होरे

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल। नानक मुस्ते ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल। महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा झट पाए।

कोलू चरखा चक्की चक, थलवारो ले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई है जंत, नानक पौंदिया गणतना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचे सब कोए, नच नच हसें चलें से रोए, उड ना जाही सिद ना होहे, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ, किन्ना मन पाओ पौड़ी, नाओ तेरा निरंकार है, नाए लए नरक ना जाइए, जियो पिंड सब तिसदा, देखा जय आख गवाई है, जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सदाई है, जे जरवाना पर हर है, जर वेस करेंदी आई है, को रह ना परिये पाईये, सलोक महला पहला, मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नावहै अर्चा पूजा अगरवास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार घर भांडे इटा कियां जल दी करे पुकार जल जल रोवे।

विच गया हों विच जमया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सचियार।

कित्थहु उपजे कित संजम एह जाय। हमें एहो हुक्म है पय किरत फराय। हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनहो जनहो इत संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया,

दुख पाया दूजा पाया, बस्तर ना पहरे अहनिस कहरे, मोन बगूता क्यों जागे गुरबिन सूता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, हल मल खाई सिर शाई पाई, मूर्ख अंधे पत गुआई, विण नावे किस थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाई, हर का नाम मन वसाई, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल, हम मैं शब्द जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे, नानक कर्मा बाहरे, दर ढो ना लहनी तावंदे, एक मूल ना बुझन अपना, अण हुंदा आप गणाई दे, हों ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जे तुझै त्याई दे, स्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ परजा।

कप्पड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मियां कूड़ बीबी खाप होए खार, कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियों

मल उतरै तन करे हच्छा तोय सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है।

की लेख है पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इना जनता कै बस किश नाही तुद वेकी जग ते उपाया इक नानू तू मेल लै इक आपो तुद खुआया गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सलोक महला पहला।

दूजा योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा।

काच रहे सबको सच समावे। ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंदरा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाओ खदाई अल्लोह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

भाग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सोच होवे तां सच पाई है पौड़ी।

वडोह वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदै लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोह कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी ये करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

आज ना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोय नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है।

गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाही पौड़ी। सतगुर वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले ता नदरी आईयां जां तिस पाणा ता मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हथ धर विचों मार कढ़िया बुरियाईयां सह टुटे नौ निध पाईयां। सलोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठायाए सुचे अगे रखियोन कोई ना पिट्यो जाए सुचा हुए कह जीविया लगा पढ़न सलोक को थी जाए सटिया।

तेत जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नामे रस खाए नानक एवं जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगण वे पंडो हो ऐ दोस्ती पंडो हो चल राह पांड मोआ पांड पालिए पांड हो ऐ बंदान सो क्यों मंदा आखिए है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गर्भ हंडी है।

आए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीरथ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसह रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

किसनों अगली ओह वजहो पेदूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरते अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

यार आप कराए करे आप हौ कैस्यो करी पकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई है एक चुल्ला रहन चढ़े एक निहाली पै सवन एक ऊपर रहन खड़े।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो।

माया पास बंद नहीं पारे, हर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपयो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तौ सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तौ मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग, वे हर के संतन।

बाजी हारी मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पहरो नहीं दगली लगे ना पाला रहाउ बाल किस बापै जिन्हों जाया पंचा ते मेरा संग चुकाया पंच मार पावा तल दीने हर सिमरन मेरा मन तन पीने पिता हमारो वड गोसाई।

काल आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

शंख बजावे वंश को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए कहत कबीर सुनो रे संतो कीती पर्वत खाया कछुआ कह अंगार पे लोरों लूकी शब्द सुनाया आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिस द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पांच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हूं खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। हरद शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तुहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई।

जब नहीं हटै गोसाई दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ तन कर मटकी मन माहे बलोई इस मटकी मह शब्द संजोई।

पै सूता बुझ गई अगन नानक सियो धुआ रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाउ टूटी तंत ना बजै रवाब भूल बिगारे अपना काज कतनी बदनी कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा।

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

समझावूं। आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जीओ, जिस पाहन को पाती

बिरारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाव जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो रहाओ, सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, कबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सो कृत कर लीजै रे मन रहाउ। कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई। काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। सुमह धन राखण को दिया मुग्ध कह धन मेरा। जम का डंड मूंड मह लागे किन मह करे निवेरा। हर जाने उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई। जो तिस भावे सत

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीकी। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दो जक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक बू

चरण रहे कर धरक परे हैं, मुखो नानक सह बाता, थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते, थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते, मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे, आसा एक टुके चार, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले गुर प्रसाद दीठी, रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन साच पछान्या।

जराए, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिखिया।

पहला पूत पशहरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंभो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार भैंस चरावन जा।

राम रमत तिस सब किश सूजे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे आठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकड़ै, तब है काहे रोया, जीम न की आस करह, जम निहा

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांदिया मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा। जम द्वार जब पूछस बबरे तब की

कसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाके भूपत राजे हर सौ मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन सुमान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव नैन देख पतंग उर्जै पासना देखै आग काल पासना मुग्द चेतै कनक कामन लाग कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय आसा जो मैं रूप किए बहुतेरे अब पुन रूप न होई तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनत नायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवे है मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

मन सत सहंस जैसी पूत पूत प्रभ सोई रहाउ। जल तरंग हर फीन बुद बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचर ध्यान न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। ईबै बीठल उबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती। माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अपना खसम त्यागो सोने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साफ कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को कीजे ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जान।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया धन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता।

है सुने बोले दौड़ियो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रास कसै लुभाना।

गुरु प्रसाद भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाके, अशली प्रभ पहचानिया, धन्य धन पाया धरनी तर, मिल जन संत समानिया, महला पंजवां, गोविंद गोविंद गोविंद सा।

लाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रल घटे अंतर पूजा होए पूजा की चै नाम त्याई है।

कारण आधार जहाँ की भगत कर है जन पूरे मुन जन सेव है गुर विचार रहाव राव सस दीपक जाके त्रे भवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा कर पहला।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

ना जाई। हर मेरा धन मेरे साथ चले, जहां हों जाऊं तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागे।

गुर आपने सद बलिहार जाऊं, सतगुर मिले हर मन वसे सहजी रह समाई रहाऊ। जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई, बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाई। से मुकत जे मन जिन है फिर धात ना लागे आई, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई। नानक गुर ते गुर होया

हृदय जिन कह कपट वस्स बाहर हूं संत कहाहे कृष्णा मूल ना चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राये तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचों हम मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा जिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पार सो होवै।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस भावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

अनसखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाउ सुख सागर।

मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावै, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तिन दरगहा हर हर दे वडे आई, धन पन सबास कह प्रभ जन को, जन नानक मेन लय गल लाई, गुजरी महला चौथा, गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवो दान हर प्राण जिवाया, हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया, मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई, मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ, जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया, बड भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया, सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया, जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया, आप कृपाल कृपा प्रभ तारी, हरे आपे गुरमुख मिले मला।

उठा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिंह चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहे जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर रिज

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा भरिया गुजरी महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पित राती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुर बाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे।

अठसठ मज्जन कर इचनाना, भ्रम आए धर सारी, अनक सोच करह दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी, तावत तावत सब जग तायो, अब आए हर द्वारी, दुर्मत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी, गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया, निमख न बिसरो मन ते हर हर, साध संगत मह पाया, माई खाते आयो घर कूता, हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनान हर तन ज्ञान, हर संग लाए ध्याना, हर तन तुलहा हर तन बेड़ी, हर हर तार पुराना, हर तन मेरी चिंत वसारी, हर तन लाहया धूखा, हर तन ते मैं नव निध पाई, हाथ चरयो हर थूका, खाव हो खर्च हो टूट ना आवे, हलत पलत कह संगे, लाद खजाना गुरु नानक को दिया, एहो मन हर रंग रंगी, गुजरी महला पंजवा, जिस सिमरत सब किल विखनास है, पितरी होए उदारू, सो हर हर तुम सद ही जापहु, जा का अंत ना पारू, पूता माता की आसीस, निमख ना बिसरो तुम कहो हर हर, सदा भजो जगदीश रहाओ, सतगुरु तुम कहो होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, अमृत

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काट।

पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल कर।

नाम तुम्हारू सगल श्रेष्ठ को तनी की ही जय जन को अंग नरारू रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारू नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरो मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारु जान कवन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गह नास काहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझ।

आराधु प्यारू निमखना की जैती ला संत सेवा कर पावनी लाइए त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहे ओ ही अरे कह संगे देख मोहयो मन लीला रहाओ जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरै मनहु।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़त तीसा तिनकी हैरत कछ ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल भ्रम मोहत जावे प्रव सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे तू तह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

तह भरम अंधेरा नाही, ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही कहो प्रभ आही, नानक टेक भई करते की, और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निसे अर भोर।

ताहि साध संगत को जोहि ना साकै मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाई गोहज पाप को बहुत परजारे मोह को सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर नर रही कंठे उर जाय जन नानक अंग किया प्रभ करते जाके कोट ऐसी दसाय गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै हुए जग की।

घर जाइए जां ते काल ना बिरथी जाइए। आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना, मन तन सदा ते

मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटे सगल उपाद रहाओ मात पिता सुत मीत भाई किस बिना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कशना आवै काम सरन साधु निर्मला गा

साध संग उधार इहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगल उपाद अटल अशेद अपेद स्वामी शरण ताकी आओ चरण कमल अराध हृदय एक स्यों लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ त्याया गई संका टूट दुख अनेरा पै बनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रहो आप राखे भये पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक

गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महावीर गरोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कूकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जम दूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाऊं कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगी दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परे ओ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरा ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

काम क्रोध अहंकार तदी अले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथी अले

बूझ अंतर शब्द विचार, अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजै प्यार, नानक चातरक अमृत जल मांगै।

गत पत पाई पाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ ऐ जी बहुते भेख करह पिखिया को एते उदर भरन कह ताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन

इतना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्श ना मेटे नित नित चढ़े सवाई ऐ जी गुर की दात ना मेटे कोई मेरा ठाकुर आप दिवाई।

आई। तू वड पुरख अगम सरोवर, हम पंखी तुझ माही। नानक नाम निरंजन दीजै, जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगत प्रेम अराधितं, सच प्यास परम हितं। बिललाप बिलल विनंतिया, सुख पाए चित हितं। जप मन नाम हर सरनी, संसार सागर तार तारन। राम नाम कर करनी रहाओ, ए मन मिर्त शुभ चिंतन। गुर शब्द हर रमन, मत तत ज्ञान कल्याण निधान। हर नाम मन रमन, चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं। जग मोह मग्न हितं, हिर नाम भगत दृढ़ मति। गुरवाक शब्द रतन, परमात भरम ना चूकई। जग जन्म ब्याद खपं, अस्थान हर निह केवलं। सतमति नाम तपं, एहो जग मोहित व्यापतं। दुख अधिक जन्म मरनं, भज सरन सतगुर उबरह। हर नाम रिद रमन, गुरमत निश्चल मन। मन मनं सहज विचारं, सो मन निर्मल जित साचे अंतर। ज्ञान रतन सारं, पै पाए भगत तर पव जल मना। चित लाए हर चरणी, हर नाम हृदय पवित्र पावन। एहो शरीर तौ सरणी, लभ लोभ लहर निवारण। हर नाम रास मन, मन मार तुही निरंजना। कहो नानका सरनं, गुजरी महला तीजा घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, निरत करी एहो मन चाई। गुर प्रसादी आप गवाई, चित थिर राखै सो मुक्त होवै। जो इच्छी सोई फल पाई। नाच रे मन गुर कै आगै, गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है। अंते जम पौ भागै रहाउ, आप नचाए सो भगत कहियै। अपना प्यार आप लाए, आपे गावै आप सुनावै। इस मन अंधे को मार्ग पाए।

के जिन लागी हर लिव तुम्हारी जी जंत सबे ही नाचे नाच है खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाच है जिन गुरमुख शब्द लिव लाए से भगत से तत् ज्ञानी जिन कौ हुक्म मनाए ये हा भगत सच्चे स्यों लिव लागै।

नानक हुक्म बुझ परवान होए तां फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया।

आई ऐसा सतगुरु जी मिले टुठा करी पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वारा।

बसियो मन आए त्रिग अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आए माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाए हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाए जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आए हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए नानक सतगुर सो।

इसकी सेवा जो करे तिस ही कौ फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए। नानक से ही उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी। अंदर तीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी। जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा। सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी। जिन को नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता। उपाय कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਖਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ।

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजै नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।

काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाइन।

तिस गुर मिले गुरमुख निस्तारा सलोक महला तीजा हौ मैं ममता मोहनी मनमुखा नू गई खाए जो मोहे दूजे चित लाए दे तिन्ना व्याप रही लपटाए गुर कै शब्द पर जाली है तां एह विचो हो जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवे जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाए नानक मन ही

पेय रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए वाह।

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई,

होवै। नानक दर सच्चै शोभा पाई पौड़ी, वज्र कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी, भरम भूले नदर ना आवनी, मन मुखियां दे अज्ञानी, उपाय कितै ना लभनी।

पावड़ी हर कह पाण है गुर मिले सेवा भगत बनीजै हर कह पाण है हर मन वसै सहजे रस पीजै हर कह पाण है सुख पाईऐ हर लाहा नित लीजै हर कह तख्त बहालीऐ निज कर सदा वसीजै हर का पाणा तिन्नी मन्या जिन्ना गुरु मलीजै सलोक महला तीजा वाहो आहो से जन सदा करह जिनको आपे दे बुझाए वाहो आहो करतिया मन निर्मल होवे हो मैं विचों जाए वाहो आहो गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाहो आहो करह से जन सोहणे हर तिनकै संग मलाए वाह वाह हिरदै उच्चरा मुखों पी वाह वाह करे नानक वाह।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास

सच्चा साई पुरख वाला सदा सदा हो तुद त्याई जी जंत सब तेरिया तू रहया समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई चिंता छद चिंत रहो नानक लग पाई श्लोक महला तीजा आस्था करता जग मोआ आस्था मरे ना जाए नानक आस्था पूरिया सच्चे स्यों चित लाए महला तीजा आसा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए नानक निश्चल को नहीं

कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वत दे जग मह उत्तम कांडी विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाओ परवदगार दा जिसनो करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचार दा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनो लाए सच तिसे उधारदा जिस दै होवे वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ीऐ दीजै अगन जलाई जीव दया नित जापीऐ नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मतवन्य मित्र असाढ़े से कौट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठियां मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भौ कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है।

तिन संग संग ना की चई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निचल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे बुझनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए ते बहुड़ ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू।

अड लहब को पौड़ी तेरे कीते काम तुदैही गोचरे सोई वरतै जग जे किया तुद तुरे विषम पै।

आप दयाधारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाहो वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम निदान अख

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसे दयाल बुझा।

जिसह पलाहे आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल हिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह अर्जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल औतरै अरी बाई गोविंद नाम मत बीसरै रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल औतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल औतरै अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल औतरै।

इस्तस जमाद प्रापयं जात स्वस्त सोकृत कृतं पावपूत भाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्कर धर सरणं हर भगत निज निह के

ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढोल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हों फिरो दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेल है मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुल गोली है।

जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार रहाव, लोकन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नकती, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ती रहाओ, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ती, ज्यों नुगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाते चुकती, छका एक देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाई है,

0: एक समाई है काटे अव घट रव्या सब ठाई हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है उस्तत करह सेवक मुन केते तेरा अंत न कतहु पाई है सुखदाते दुख भंजन स्वामी जन नानक सद बल जाई है देव गंधारी
1: माई होनहार सो होई है
0: राच रहियो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहाओ कह फूल है आनंद बिखै सोग कब हसनो कब रोई है कब हूं मैल भरे अभमानी कब साधु संग धोई है कोई न मेटै प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है कहो नानक तिस गुर बलिहारी जेहे प्रसाद सुख सोई है देव गंधारी माई

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलाव रहाव अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यों प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

महा सुख पायो, चिंता रोग बदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बसारियो, माया बंद काटे कृपा निद, नानक आप उधारियो, देव गंधारी मन सगल सियान परही, करन कराम नहार स्वामी, नानक ओट गही रहाओ, आप मेट पय सरनाई, एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परम अंधेरा

किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। ते बड़ भागी ते पतवा।

जिस लाड लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कब हूँ चलना विकल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहा उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

मान त्याग हर चरनी लागो, तिस प्रभे अंचल गही है, आंच न लागे अग्न सागर के, सरन स्वामी की अही है। कोट पराद महा कीर्त कान, बहुर बहुर प्रभ सही है, परना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक तिस सरन ही है। देव गंधारी पंजवा, गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बनासे, उतरे सगल कलेचा रहाव, जन्म जन्म के किल विकनाश हैं,

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरने हारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में है इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारू नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ तारो देव गंधारी।

जाको उपजी छोड़ ना कतुहु जाता रहाउ। बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन।

जब चितवाऊ तब तुहारी उन समाहार मेरा मन साधारी सुन गावू गुर बचनारी बल बल जाऊ साध दरसारी मन मैं राखू एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ।

तरन परियो संतहारी कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिगसारी देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गावह हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया कुलह समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पीतर तास ग्रास उचारियो नानक ओट गही जगदीश पुनः पुनः बलिहारियो राग देव गंधारी महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन भेख मोहन रहत नराग।

चार बरन्ना मुक्त भय सेव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा।

जान रहाउ काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान

ताकत स्यो करे उतीरे झूठै कीरे झूठ प्रीत छुटकीरे मन छुटकीरे ताकत संग ना छुटकीरे रहाओ ज्यो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू कीरे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा ने।

साध पगा हे तरुण तीरे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हम बल बल जाओ।

पोयगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाऊ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध परिया फिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाचहारिये अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

दड़िए गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आसा ममता पूरिया मेरी जिंदड़िए हर मिलिया भुख सब जाए राम तुर मस्तक हर

माया राम वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए गुरपूरै गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए इनके सब दुख गवाया राम अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए तित जपे पाप गवाते राम पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चहो कुंडी चहो जोग जाते राम हम मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर तरना राम अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर राते राम बिहागड़ा महला चौथा हों।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जन के पग नित पूजिय है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सह राम। नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सह राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम।

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

तिनके संग मल उतर मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत कर पहला।

मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सूबा पाइये जिनको बधाते तुरहु लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाइये।

नानक है नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजे हा दह दिस खोजत हम फेरे मेरे लाल जियो हर पाए अड़ा घर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस मैं रहया समाए राम सर्वे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया मिटिया अंधेरा दुख नाथा हमें हर रस चोया जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाई जन कह नानक सतगुर मलाया हर पाए अड़ा घर आई राग।

भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बदाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़ सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर

संत प्रसाद तरे पव जल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रहनड़िए प्रिया प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागिनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागिनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन

चरण लग है मन प्रिय प्रेम कणा हर की भगत मंग है हर भगत पाई है प्रभ त्याई है जाहे मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण भ्रम भीत हर हर मिल भग है बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जप है हर नार सुहागणी सब रंग माणी रांड ना बैसे प्रभ पुरख चिराणी नह दुख पावे प्रभ त्यावे तन ते बदभागिया सुख सहज सोवे है किल विख खोवे है नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रिय बचन मीठे पाणी बिनवंत नानक मन इच पाई हर मिले पुरख चिराणी तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उदारनु प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तारनु जो सरण आवै तिस कंठ लावै एहो बिरध स्वामी संदा बिनवंत ना

तपत ना कतह बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये, नाथ निर्गुण कछ ना जाना। मेरा गुण अवगुण ना बिचारिये, दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्राट कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मनहु ना बिसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला, सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा।

गुणग पालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा फिर दुहेली, तू बलवंच लूक कर है, सब जाने जानी राम, लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम, किरत कमाने दुख सहो प्राणी, अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू, आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया, भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे, किरत घण विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया, महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा, खोए ज्ञान पछतापिया, बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापिया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला, अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला, सरन तेरी कट महा।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन समा

कल्याण मैं प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

हारी राम संग तेरे कछना चल बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने काम पुत्र कलतरना संग सोभा हस्त घोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाईए, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गुआ।

तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण परवीना।

पाए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी किसनों क्यों अंदेसा किसै गल्लै दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्लां का किसनों त्याए दिया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे जगत तरिया सब लोड़ी है। सलोक महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का नाउ वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुबाई।

सब शास्त्र आप कथै आप पीजै आपे ही वह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरति आपे अकथ कथीजै आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजै आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छाड तू पहो कर झल गवाए गुर कै भै केते निस्तरे भै विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम करो।

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुख दाता वडन। सलोक महला चौथा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे खबर ना पावही।

सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक एहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किस की धार सत संगत स्यों मेलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोसत आप उपदेसै आपे

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुगदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

लाए ध्याना आपे मोनी वरतदा आपे कथै ज्ञाना कौड़ा किसै ना लगई सबना ही पाना उस्तत बरन ना सकिए साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पहला।

अन अंधार पाथर ले पूजह मुग्ध गवार ओहे जा आप डुबे तुम कहां तरनहार पौड़ी सब के हो तेरे वस है तू सच्चा साह भगत रते रंग एक कह पूरा विसाह अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाह सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाह संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाह सलोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आपहु जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनो कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए किस जोगी की नगरी सब को वसे भेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिये मुंडे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

साचे लग्या ध्यान गुरमुख मन मेरे नाम संभाल सदा निभै चलै तेरे नाल रहाउ गुरमुख जात पत सच सोए गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए गुरमुख जिसनो आप करे सो होए गुरमुख आप वडाई देवै सोए गुरमुख शब्द सच करनी सार गुरमुख नानक परवारै साधार वडहंस महला तीजा रसना हर साध लगी सहज सुभाए मन तृप्तिया हर नाम ते आए सदा सुख साचै शब्द विचारी

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्म जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौं क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौं औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा।

अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए आओ सब वेस करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा सो पिर प्यारा मैं नदर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो शिंगार शिंगारी सो पिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन पिर रावेड़ा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों पिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी पिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का इत मार्ग भैने मिलिए आपनड़ा प्रभ नदर कर देखे नानक जोत ज्योति रलिए जो हर प्रभ का मैं दे सनेहा तिस मन तन अपना देवा नित पक्खा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी धोवा नित नित सेव करी।

हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवां गुर सत गुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावां गुण गावां नित नित सद हर के मन जीवै नाम सुन तेरा नानक जित

रहा। सो हर हर सदा संभाली, सो हर हर नाम सदा सदा संभाली, जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया, नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नाही किश पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावै, एक तिल ताका महल ना पावै, सहावी कौन सो वेला, जित प्रभ मेला रहाउ, लाख भगत जाको अराध है, लाख तपीसर तप ही साध है, लाख जोगीसर करते जोगा, लाख पुगीसर भोग है भोगा, कट कट वस है जान है थोड़ा,

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभ दाते, जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता, नानक साधु देख मन राता, बड़ा हंस महला पंजवा, अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ, जाल काल महियल रहे आपर पूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे, जिसनो नदर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए, जी जंत सगले प्रत पारे, सरन परे हो नानक हर द्वारे, बड़ा हंस महला पंजवा, तू वड दाता अंतर जामी, सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा, हम सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरै ना कबहू सीजै, वड भागी गुर पूरा पाइय, गुर कृपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना, कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा, वडहां

अंतर भूख ना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

सार संभाली मैं निर्गुण कौ रख लेता हों पई उडीनी कंत को अमाली सो पेर कद नैनी देखा सब रस भोगण विसरे बिन पिर कितै ना लेखा इहो कापड़ तन ना सखावई कर ना सको हों वेसा जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिने आगे हम आदेसा मैं सब शिंगार बनाया अमाली बिन पेर काम ना आए जां सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सहो रहया समाए हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके धुआं सद पाए जिचर दूजा भरम सा अमाली।

सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जस है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे।

सब उपायन आप आपे नदर करे वडहंस महला पहला करहु दया तेरा नाम बखान सब उपाय आप आपे सर्ब समान सर्बे समाना आप तू है उपाय तमे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ पिया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहि माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहि एक मूड़।

कबो हो ना जावे। राजो ता तेरा सदा निहचल, एहो कबो ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हों बलिहारी सदा हुआ, एक तेरा नावे। जुगा जुगंतर भगत तुम्हारी,

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारी सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द सुमाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सुवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे पर पूरे राम फिर रव रहे पर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजियै, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज घर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई।

पारा, खोटे खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम, खोटे दरगहा सुटियन, उभे करन पुकारा राम, उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा, मनमुख जन्म गवाया, विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया, मनमुख संता नाल वैर कर,

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रुबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हऊ मैं मैल परीजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यो लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोए ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया और मूरख कूक मोए गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुध न काई राम गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे पंडा।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है।

पाई सुख सतगुर देव मन परसते हौ जीवा सतगुर देख सरसे कोई आण मलावे मेरा सतगुर पूरा राम हौ मन तन देवा तिस काट शरीरा राम हौ मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाते देहो सतगुर चरण हमते।

वै हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख भरम भउ भागा सेवक भाई मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा कहो नानक हरे आप मलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई वडहंस महला चौथा हौ गुर बिन खरी निमाणी राम जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुर बिन खरी निमाणी जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया।

वह तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभ भावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियानप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम हर नाम देवे मेरा अंत सखाई राम हर हर नाम मेरा अंत सखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुस्त कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छड़ाया तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम त्याई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम तिन निफल जन्म सब बिरथा गवाया राम निफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते साकत मोए मर चूरे कर हुंदे रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिनका दर

चन सतगुरु पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करह बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथयड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाथे पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनमिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा
जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सब आसै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरै मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गतमित जानिया सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम बखाणिया हर राम नाम सलाहे हर प्रभ हर भगत हर जन मंगी।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव

मन मैगल गुर शब्द वस आया राम। मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती। कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती। हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है। वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया। राम मिल सतगुर जी।

पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस मा

राम गुरमंत्र शब्द सच दीता राम सच शब्द ते आया मंगल गाया चूके मनो अदेसा सो प्रभ पाया कतह ना जाया सदा सदा संग बैसा प्रभ जी भाणा सच्चा माणा प्रभ हर तन सहजे दीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता तौ भाणा ता त्रिपत अगाए राम मन थिया ठंडा सब त्रिशन बुझाए राम मन थिया ठंडा चूकी डंजा पाया बहुत खजाना सिख सेवक सब पुंचन लगे हौ सतगुर कै कुर्बाना निरभउ भये खसम रंग राते जमकी त्रास बुझाए नानक दास सदा संग सेवक।

0: तुद सलाही
1: गुणे अवगण मेरा किस ना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आई भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया।

आने से परधाने हर से तीरंग राते हर रसे अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा इनकै सद कुर्बाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख पए दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या।

पूर्वकमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंद लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इत धंदा कूड़ा चार देह आगै सर पर जाण आगै सर पर जाना ज्यों मेहमान काहे गार्ग कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाइय नाम तिसै कालीजै आगै हुक्म न

रेवा रोवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रूवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखे नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

घर काउ जमन मरन वड्डा वे छोड़ा बिनसै जग सबाई लभ तंदै माया जगत भुलाया।

फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणिया आपे लहे मलाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया औ तिन पूछो संता जाए आप छोड़ सेवा करी फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाय फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया परपूरे वेख हदूरे रंग माणी सहज सुपहाय इन्नी अपना कंत पछाणिया हौं तिन पूछो संता जाए।

प्रेम समाए, जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जग

फिर नाले गुर प्रसादी साचा फिर मिले अंतर सदा संभाले फिर अंतर संभाले सदा है नाले मनमुख जाता दूरे इहो तन रुलै रलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सा धन मिले मलाई तेरे अंतर सदा संभाले फिकरो वह पिरह विछुनिया अंधी ना जाने पिरह नाले बढ़ांस महला तीजा गुरु वह पिरह विछुनिया मैं फिर सचड़ा है सदा नाले जिन्नी चलन सही जानिया सतगुर सेव है नाम संभाले सदा नाम संभाले सतगुर है नाले सतगुर सेव सुख पाया।

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपव हर जीव सोए सतगुर सेवै हर मन वसै तिथे भउ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्ने सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ है सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतमै जिन हम मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो संतोह राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेसया गुर विटण्यो हौ सदवारी। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूं सुख सार ऐसे मिलन वडियाईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाए प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सत्यार नानक सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार। महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख रास बिख खाना बिख पहनना बिख के मुख गिरास।

काम क्रोध विनाश सतगुरु का भव छोड़िया मन हट काम ना आवे रास जमपुर बदे मारिय है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाय विसपे कै थाम हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाय शब्द रत्ते तिना सूजी पई दूजै भरम भुलाय पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योति सुभाव है।

ना हो गई, अचिंत वत्सय मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय, मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय, सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय, घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय, पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गवाय, नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी, तित जाए बहु सत संगति, जित हर का हर नाम बिलोई, सहजे ही हर नाम ले हो, हर तत् ना खोई है, नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोई है, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है, तिस गुर को सब नमस्कार करो, जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना, जिन सतगुर नाल प्यार, मिल प्रीतम तिनी ते आया, सच्चा प्रेम प्यार, मन ही ते मन मानिया, गुर कै शब्द अपार, एह सज्जन मिले ना विछड़ है, जे आप मेले करतार, एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया, शब्द ना करहै विचार, विछड़िया का क्या विछड़ै, जिन्ना दूजै भाए प्यार, मनमुख

है सच सिरजनहारी। जिस तू मिल है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। श्लोक महला तीजा रत्ना पारख जो होवै सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार ना जाने अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझनहार। मूर्ख आप गणाएंदे मर जम्मे है होए खुआर। नानक रतना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उच्चरे हर नामो नित व्यवहार। कृपा करे जे अपनी ता हर रखा उरतार। महला तीजा।

पातशाही भगत जना को दितियन फिर छत सच्चा हर बनाए सदा सुखिए निर्मले सतगुर की कार कमाए।

साधना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुर सेवै नाम मन वसै विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवै तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिलै वडियाई।

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायत रूप है बिन नावे नक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही।

सो होने गुर का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सत्य सुबा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवै जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना होवे हों मैं शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसै मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए नानक पूरे कर्म

पछताए महला तीजा। इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। सब कट भोग वह लिप्त रह लखना लखना जाई। पूरा गुर वे खा लिया शब्दे सोजी पाई। पुरख से वह से पुरख हो वह जिन्नी हों मैं शब्द जलाई। तिसका श्री को

सेवक सेवा करी, हर सच्चे के गुण गाई। नानक वेख विगस्या, हर सच्चे की वडियाई पौड़ी। जिनकै हर नाम वसिया सद हिरदै, हर नामो तिनको रखण हारा। हर नाम पिता हर नामो माता, हर नाम सखाई मित्र हमारा। हर नावै नाल गल्ला, हर नावै नाल मसलक। हर नाम हमारी करदा नित सारा, हर नाम हमारी संगत अत प्यारी। हर नाम कुल हर नाम परवारा, जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया। हर हलत पलत सदा करे निस्तारा, सलोक महला तीजा। जिन कौ सतगुर भेटिया, ते हर कीर्त सदा कमाहे। चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया, सच्चै शब्द समाहे। कुल उधार है अपना, मोख पदवी आपे पाहे। पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया, जो गुर चरणी जन पाहे। जन नानक हर का दास है, कर कृपा हर लाज रखाए। महला तीजा, हम मैं अंदर खड़क है, खड़के खड़क विहाए। हम मैं वड्डा रोग है, मर जमे आवे जाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए। नानक गुर प्रसादी उभरे, हम मैं शब्द जलाए पौड़ी। हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर, अविनाशी पुरख विधाता। हर नाम हम सिरे वह, हर नाम हम पूज्य है। हर नामे ही मन राता, हर नामे जेवड़ कोई अवर ना सूजै। हर नामो अंत छडाता, हर नाम दिया गुर पर उपकारी। धन धन गुरु का पिता माता।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास।

और पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे और पहनन की हमारी सर्द गई हर नाम हमारा वणज

पौड़ी, जिन उपाए जी तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाउ भोजन चाखिया, तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया, सब अंदर एक वरतै तिन विरले लाखिया, जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा। सतगुर नो सब को वेखदा, जेता जगत संसार, दिठै मुक्त ना हो गई, जिचर शब्द ना करे विचार, हम मैं मैल ना चुकई, नाम ना लगे प्यार, एक आपे बख्श मलायन, दुबदा ताज विकार, नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। महला तीजा। सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार,

0: मिटै, मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सकै,
0: मन होए निकिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख इत तन धूड़ तुम्हाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यों झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यों वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंदन वहन रत्ता हित कारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया।

बिहारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोठ महला पहला जिस जल निध कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो हो वेस भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव है घर अमृत घट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा कौ धावो कर अवगुण पछताही जियो सर अपसर की सार ना जाने फिर कीच बड़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नावो काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुर बचनी फल पाही जियो ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोठ महला पहला पंच पदे अपना घर मूसत राख ना साक है की पर घर जोहन लागा घर दर राख है जे रस चाख है जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कमन मत लागा नाम वसार अन रस लोभाने फिर पछताहे अभागा रहाव आवत को हरख जात को रोवह एह दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग पगावै गुरमुख सो अनरागा हर रस ऊपर अवर क्या कही है जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहित जिन एहो रस खोया।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसर सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाई है निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाई है।

प्रभ पाया। छबदे हूं मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी। ज्ञान तत् बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया। हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धामदा। दूजे भाई खुआया मनमुख मुगद हर नाम ना चेतै। बिरथा जन्म गवाया।

कर कर विगुते केहो चलै ना चल दिया नाल गुरमुख हो वै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चान अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती।

आप राखह जो तेरे मन पाणी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंतकाल तेरा बेली होवे सदा निभ तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो

अंत गए पछताए। सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अनदिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौं लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवै, अपने पाणे जो चले पाई। विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम भुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म करह गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारु वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई। कोई ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाणे। हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई। बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर। जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसे मन अंतर। विचों आप गवाईए, सोठ महला तीजा चौथुके। सच्ची भगत

सरनाई। अपनी नदर करे पात राखै, हर नामो दे वड्याई रहाउ। पूरे गुरते आप पछाता, शब्द सच्चा विचारा। हिरदय जग जीवन सद वस्या, तज काम क्रोध अहंकारा। सदा हजूर रव्या सब ठाई, हिरदय नाम अपारा। जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा। सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जाग आया। हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अगाया। कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोए ना बूझे, गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवै सो मग पजाणै, हर रस रसन रसाई। जप तप संजम सब गुरते होवै, हिरदय नाम वसाई। नानक नाम समल है से जन सोहन, दर साचै पत पाई। सोठ महला तीजा दुतुके, सतगुर मिलै उल्टी पई पाई। जीवत मरै ता बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई। जिस ज्योति ज्योत मलाए, मन रे हर हर सेती लिव लाए। मन हर जप मीठा लागे पाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाउ। बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मन मुख दूजै पाए। तोह कुट है मन मुख कर्म करह पाई, अल्लै किशु ना पाए। गुर मिलै नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो परवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईऐ पाई, गुर शब्दी मेलाए। सोठ महला तीजा घर पहला, तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाय रहाउ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है पाई, हिरदै रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

कमावे। हर रस साध न आया संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृपतासे, विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई, नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाई। सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुरु दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ, मनसा मार दुबदा सहज सुमानी पाया नाम अपारा, हर रस चाख मन निर्मल हुआ गिल बिख काटन हारा, शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से। सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या,

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, बनजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहू, आपे बणज व्यापारिया प्यारा।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमणिया

आपे जल थल सब है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सब ना रिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

प्यारी ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह बजाया।

आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुड़ ना आवन जान, रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बख्श कराईंदा प्यारा, आपे सच निशान, आपे हुक्म वरतदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार है।

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़ियाई।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाए, जन नानक अवर ना कोई, सोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौ जाती किस आराधी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निद देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मुहताजा रहाउ, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नुखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख सहज समाणी।

पाऊ। कूट पराध मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वडभागी पाई। रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी, सरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ पराधी, ओट संतन की।

आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जाको तुदे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिटेओ अज्ञाना, प्रगट भय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई। कहो नानक जिस भय दयाला, ता को मन ते बिसर ना जाई। सोठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे।

साध शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे, फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो परम पलावा कहियत, तिन मह उर्जियो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात, एहो खसम का किया, जाको कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत नाऊ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सब ना करत उदारा, कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया, एहो पूरन तत बिचारा, सोठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचारे, राम नाम तत सारा, किल बिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बाणी रहाओ, मुकत भुगत जुगत सच पाईए, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता, सर्वनी सुनिए रसना गाईए, हृदय त्याईए सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई, वड्डे भाग रतन जन्म पाया, करहो कृपा कृपाला, साध संग नानक गुण गावे, सिमरै सदा गोपाला, सोठ महला पंजवा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, गावहो सुनहो पढ़हो नित पाई, गुरपूरै तू राख्या रहाओ, साचा साहिब अमित वडाई, भगत वच्छल दयाला, संतां की पैज रखदा आया, आद बिरध प्रतपाला, हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो, सर्ब वेला मुख पावो हो, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोबिंद नित गावो हो,

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

खाटिया हर भगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राये अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भानै अंतर बिद जानै, तां की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह न जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवर

आव हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया।

थीवे विघ्न बनासन सब दुख नासन गुरचरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हूं मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहया समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थल रमैया आहयो रहाउ गुण निदान नानक जस गावे सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहया समायु सूठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन जी अरे मुखी रहाओ शांत पावह होवह मन सीतल अग्न ना अंतर तुकी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडाव हो एह पीतर ते इनको डार हो आपन निकट बलाव हो अपनी बिद आप जनाव हो।

नानक गुर पायो वडभागी तिस जे वडे अवन ना कोई झूठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हार है राखियो बारिक

पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करन कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, नंद बनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिया भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोई करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोठ महला पंजवा मेरा

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै ज्यों बारिक पित माता। सोठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारु नह पति आया। उमराव हुआ गै तेरा मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

सर्ब थान को राजा, तह अनहद शब्द अगाजा, तिस पह क्या चतुराई, मिल नानक आप गुआई, चोट महला पंच।

कल्याण मंगल सियो, घर आए कर इस नाना रहाओ, साची गुर वडे आई, ताकी कीमत कहन ना जाई, सिर शाह पातशाह गुर भेटत मन ओ माहा, सगल पराशत लाथे मिल सा

जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर।

पंजवां पार ब्रह्म निवाही पूरी काई बात न रही आयूरी गुर चरण लाए निस्तारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया।

दूरी नावे, अपना नाम आपे दिया, प्रभ करन हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा, एहो पूर्ण बिमल बिचारा, कर कृपा अंतर जामी, दास नानक सरन स्वामी, सोठ महला पंजवा, गुरपुरै चरणी लाया, हर

पूरी, प्रभ रब रहे आपर पूरी, हेम कुशल भया इस नाना, पार ब्रह्म बित हो कुरबाना, गुर के चरण कवल रिद तारी, विघ्न न लागे तिलका कोई, कार्य सगल सवारी रहाऊ मिल सा।

मिल त्याई है मन बाशत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब भेद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश करना।

मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया चोट महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दइए वसाया सुख सागर गुर पाया ता सह

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभु अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी।

ताप गवाया गुर पूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई रहाओ जो मंग है सो ले वह प्रभ अपने संता देव है हर गोविंद प्रभ राखिया घन नानक साच सुभाखिया।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श समावे, नानक दास सच्चे गुण गावे, सोठ महला पंजवा, गुर मिल प्रभु चितारिया।

तू प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक।

आस अपने की कार जे आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ परे उपकारी पूर्ण कल जिन धारी नानक सरनी आया मन चिंदिया फल पाया सोठ महला पंजवां।

हर हर हर अरादु हर अराद सबू किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व सुखा फल पाया सोठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहे।

सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना।

होता। जो सिवरै तिसकी गत हुवै, उदरहै सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहु पूरन हर तन पाया। कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म।

बाणी गावह पाई ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया। चौथ महला पंजवां गुर पूरा आराधे कार्य सगले साधे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे संत हो राम जपत सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी। चौथ महला पंजवां भूखे खावत लाज ना आवै त्यों हर जन हर गुण गावै। अपने काज को क्यों अलकाइय जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल सदा सदा सुख पाइय। रहाओ ज्यों कामी काम लुभावै त्यों हर दास हर जस पावै।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

आओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा पूरा गुर पूरी मत जाकी।

दीन दुख भंजन आपे सब बिद थाटी हिन मह राख लियो जन अपना गुरपूरै बेड़ी काटी मेरे मन गुर गोविंद सद त्याई है सगल कलेश मिट है इस तन ते मन चिंदिया।

सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोठ महला नवा मन रे कौन कमात तै लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उदयाना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज

रहाउ अकाल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाव। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुर जा कै सिमरै, भव सागर कौन।

फांसी सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही यह सुख माया के उर्जे ओ कहां गवार अज हूं।

निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार सोठ महला नवा यह जग मीत ना देखियो कोई।

पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

कह झूठह लागियो जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग पौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

हरख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जग ते रह नरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेहे घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेहे एहे जुगत पछानी नानक लीन।

बिंद सुखवासी नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राते जल बूझी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

पहाय। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख देव वडियाई। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम ना पाई। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नाम। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहाम। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ाम। मन मुख झूठ लह पैमान।

क्या कथिय भाई चालो सदार जाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक परम पला एक भगती राती तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ हो अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम अदारा गगनंतर वासिया गुण पर गासिया।

प्यारी अमृत रसन हरे बूढ़े भारे पै बिना प्यारे तारे नजर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिया।

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण गातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

मन वस्या सब काज सवारन हारा उन्ना की रीस करे सो विगुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद बखाने बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई जिन

तनहारा नानक तिन कै सद बलिहार जिन हर राख्या पुरतारा सोरठ महला तीजा दो तुकी नगुणिया नु आपे बख्श लए भाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है भाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मलाए गुणहीन हम अपराधी भाई पूरे सतगुर लए रलाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार भौजल पार उतारियन भाई सतगुर बेड़ै चाड़ मनूरै ते कंचन पए भाई गुर पारस मेल मलाए आप छोड़ नाऊ मन वसया भाई ज्योति ज्योत मलाए हों वारी हों वार ने भाई सतगुरु कहो सद बलिहार जाओ नाम निदान जिन दिता भाई गुरमत सहज समाव गुरबिन सहज ना उपजै भाई पूछ हो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर भाई विचो आप गवाए गुरमति भौ उपजै भाई भौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाई भाई सच नाम आधार जो सतगुर सेव है अपना भाई तिनकै हो लागो पाए जन्म सवारी अपना भाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है भाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै भाई तिस बिघन न लागै कोय सोरठ महला तीजा हर जियो शब्दे जापदा भाई पूरे भाग मलाई सदा सुख सुहागणी भाई अन दिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो रंग राते हो भाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावनी भाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख ना लगे भाई हरे आप बसै मन आए फिर का हुक्म ना जानी भाई सा कुलखणी कुनार मन हट कार कमावनी भाई विणना वह कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है भाई पाए सच्चा बैराग अन दिन राते गुण रवै भाई निरपहो गुर लिव लाग सबना मार जीवाल दा भाई सो सेव हो दिन रात सो क्यों मनो वसारी है भाई जिस दी

हार प्यारी अंतरजामी एक रहाओ कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी के लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारी जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारी तिन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारी तिसते उपजिया सोग भोग पुंचाए पुलायन प्यारी उतरे नहीं वजोग जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवै मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी से तन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरे नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत संगना कीजई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मोहि काले उठ जाय मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाय जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिन्ना पूरी पाय संजम सहस सियान पा प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवे प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भव जल पार परे जिस भावे तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारी जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरे प्यारी नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो निवल पोंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद्ध बादे।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरै एह बिद, जे

भूम बहुअर्ते नह मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंड होता खट कर्मा रत रहता। हाँ हाँ करत बंदन मह परया।

ओ नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

पुरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीबे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी राव।

जे अभिमान करहे विकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगत अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगिया फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत तज बिक संग्रह करत आप खवाया। गुरमुख विरले सोजी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन सीतल होया,

बिरसा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आइये। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये। गुर पूरै वेखा लिया गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए। रतना पूरी दे जियो वंजे चौखनिए। सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरत आप हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिष्ट सवार सिर तंदे लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना। हउ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलब है। गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेव है अपना, हौ तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए, तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए, एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके अखत तीरथ नहाए, मन की सार ना जाननी हौ मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भौ पया बड़ भाग वस्या मन आए, पै पय मन वस हुआ हौ मैं शब्द जलाए। सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए, सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए। पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फेरे से पत्ते दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाय सहसा रूप ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाहे नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाव ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुह चारन बदनाव नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी। जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड़ गया ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खाद मन तृप्ति है पाईए मोख द्वार एहो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई। पौड़ी। बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को

सत हुए मनमुख परमे सहसा हुए अंतर चिंता नींद ना सोए ज्ञानी जाग है सवह सुपाए नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आय जित किस सोजी पाय ऋण जिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाय नानक शब्द पछाणिय नाम वसै मन आय महला तीजा इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार गुर किरपा ते पायन जे देवै दे मनहार सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवारन हार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रज्जै कूड़ जू विष्टा काग खावई जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चकिया चौ आया एहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुरे अगे तै पौ सब किश जाने जान आसा मन सा जलाए।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवई हिम्मत कहन न जाय नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझै बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझै इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहानै गुरमुख होए सो भौ करे अपना आप पछाणै गुर प्रसाद।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहया हर त्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना तन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख न आयो हन दिन जलत विहाय कूक पूकार ना चुकई ना संसार विचों जाई नानक नाम विहूनिया मोहे काल उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए द्वार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चै शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चै नाए प्यार नानक नाम रत्ते सहजे रज्जे

अग्गै पिच्छै सुख नहीं, मर जम्मै वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा होए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूणिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम त्याईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चित एक अरादिया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभे आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कुमहल ना

नानक गुरमुखार नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभु खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर क्रिम

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

री जन उथारै तपियो सुत्या गई विहाई सतगुर का शब्द सुनना जागियो अंतर ना उपजियो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाई जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाई नानक गुर सरनाई उपरी सच मन शब्द त्याई मन।

करहु पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरहै कसुद मन ज्यों तरखट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी। हर मेलो हो सतगुर दया कर।

हर सेती मन राव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे शिंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैणी। सलोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है। हर दासन को मित हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे। कर प्रीतम स्यो नेव किरपा कर कै सुनो प्रभ। सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है। सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई भाम दी। जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा। हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है। हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाई हर रस रसन रसाई। पौड़ी रहन दिन सप्रभात तू है ही गावना। जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया। स्लोक

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुरु पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे

पौड़ी। गुर सच्चा बदाते हो रखवाले गुर दित्ते, पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते। गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते, गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते। नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते। सलोक महला पहला ताकी रजाए लेख्या पाए, अब क्या की जय पांडे।

तेन निज कर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भूतपूर्व

परत है, या तन की यह बड़ाई, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया। जब दस मास उर्द मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया रहा। ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस, जोर जोर धन किया। मरती बार लेहो लेहो करिए, भूत रहन क्यों दिया। देहरी लो बरी नार संग पई, आगे सजन सोहेला। मरखट लो सब लोग कटंब भयो,

जाई। हमरा धर्म गया पौ भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

राम न कर सपतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाउ तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

तो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाऊ लौकी अठ सठ तीरथ नाही

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटियाउ भा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही नेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

लंक पपीखण आप्यो हो सोरठ घर तीजा अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर गाजै।

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म भागा, गुर पूछे मन पति आगा।

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीरे, सहजे होए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूतन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलाब जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना बिचार्यो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन।

राखै जा सोए, जह देखा तह रह समाय, तुद बिन दूजी नाई जाय, जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ

नहीं कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिउ चित लागे फिर का न खाई रहाउ, सच सिमरिया हुए परगास, ताते बिखिया।

काती कूड बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी को जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान संबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मालक होवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप, था नष्ट जग प्रिट होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी तामी तह नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाचे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोदह, करह वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, ऐसी आरती होए, भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजन।

एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोई तिस कह चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं को होए जाते तेरे नाम वासा तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन अखुट नान फुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाए गुर कृपा ते हर मन वसाए से तनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर तन परगासिया।

सुख मानी अंतर सहज सुमानी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख ना।

बिन सतगुरु सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पात उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दिरड़ाई। भगत करे जन वडियाई पाई, काच रते सुख सहज समाई।

को सत तृष्णा यज्ञ बुझाई, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चलै ता आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी,

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

इस मन की सो जी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा, गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

लाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे बख्शे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए। रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे, हम मैं विच सबकार कमाहे, गुर प्रसादी हम मैं जाए, आपे बख्शे लए मलाए। विख्या का तन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान, आप छोड़।

ते गुर परसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सत गुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

नित कीरे। तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारे गात्मित कह ना सकह प्रभ, हम क्यों कर मिलह अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा। जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता। हम तिस कह सद कुरबानी, हर के संत सुनो जस कानी। हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब के लिख पाप ले जानी रहाव। ऐसा संत साध जिन पाया, तेवड़ पुरख वडानी। तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी। हर हर अमृत पी त्रिपता से, सब लाती भूख पुखानी। जिनके वड्डे भाग वाडी विचे, तिन हर जपे हो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तनासरी महल

हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथा, हर हर बूंद भये हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिल लाती, हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी, मुख देव हो हर निमखाती, हर बिन रह ना सको एक राती, ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहा, तुम हर सरवर आते अगाह, हम लह ना सक है अंत माती, तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती, हर के संत जना हर जपेओ, गुर रंग चलो लहराती, हर हर भगत बनी अत सुबा, हर जपेओ उत्तम पाती, आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे पाती, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा, कर युग का धर्म कहो तुम पाई, के विछूट है हम छुटका की, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जपे हो तरह तरा की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना, हम मांगी भगत एकाकी रहा, हर के सेवक से हर प्यारी, जिन जपियो हर बचना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी, हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साध जना की, दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, सेव चरियो चंद चंदा की, तुम वड पुरख वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपाकी, जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय, कर दासन दास दसा की। तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दुपदे।

हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी।

नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरे सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तिन्ना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कहो गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

प्यारी, सब तुझ त्यावह मेरे साह, ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, तनासरी महला पंजवा, घर पहला चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वचल निरंकारी, कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारी जल थल महियल रविया सब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मरारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन बासन दे कर गढ़हा गाडी रहाव। ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारे ओ पीतर,

मन गायो, भयो परगास सदा सुख मन मह, सतगुर पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद भीतर वसिया, ता दुख परम पौ भागा, पई परापत वस्त।

दुख सूबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कीओ बंधानी तनासरी महला पंजवां वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिना

साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ भस्म संगीत अमृत।

केल वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समा

सदा सदा तुद त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई। अंड रूप रवेओ सब मदे, जत कत पेखों जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाई, मुक्ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई। नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृपत अगाई। तनासरी महला पंजवां, जिन कीने वासे अपने त्रै गुण। भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे। क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो। साध प्रसाद हर हर हर गाय, बिखै ब्याद तब हूटो रहाओ। नह सुनिए नह मुखते बकिए, नह मोहै ओह डीठी। ऐसी ठगौरी पाए पुलावै, मन सब कै लागै मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन ओह चलत दिखाया। गूजी पाहे जलै संसारा, भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाते। तनासरी महला पंजवां, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे।

आओ कोट पराध हमारे खंडो हो अनक विधि समझाव हो हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखाव हो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तना

निर्मोल कहार जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रहन तनासरी महा।

हार तनासरी महला पंजवा अबहर राखन हार चितारिया पतत पनीत किए खिन पीतर सगला रोग बदारिया रहाओ गोष्ट पई साध कह संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांछ नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागू राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाय जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो अपना कर बिरता सगल मिट

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा।

काल आन संयम किछ ना सूझै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन।

कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाइए साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमल आधार।

रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजै अनासरी महला पंजवां मेरे लाल भलो रे भलो रे भलो हर मंग।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारे रहाओ सास सास निमख निमख जिन सरहन चितारे साध संग जपन संग मन निदान तारे चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवां घर अठवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रख।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई नव नित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, तनासरी महला पंजवां, नाम गुर दियो है अपने, जां कै मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, ताका युग मह धर्मा।

जिस जन कै पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवां नेत्र पनीत पय दर्श पेखे माता परो रवाल रस रस

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी। राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी। मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भव निध पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिन सना कतहु जात। सतगुरु

प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी रहाऊ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी। एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त। साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरे जाति। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै। चरण कमल निध थाती रहा।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख।

दास मह सोई जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आई जाइए रहाउ। सो गुर करो जे साच दरडावे कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा।

मिल मलाई। आप दिखावे आपे देखे, हठ ना पतीजे ना बहु भेखे, कड़ भांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ भूलह।

आवे पढ़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करै सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटेरे बंधन माई गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल यात्रा आवण जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अनदिन हरक साचा दुख

जियो। हर भगत सहावी साचे भावी, पाए भगत प्रभराती। पिर रलिया लाजो मन बाला, तिसरावे रंग राती। गुर शब्द बगासी सहुरवासी,

सरना जो जन भाओ भगत कछ जानै ताको अचरज काहू ज्यो जल जल मह पैस ना निकसै त्यों ढुर मिलो जलाहू हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन कांसी तजह कबीरा रमैये कहाने होरा रहाऊ कहत कबीर सुनो रे लोई परम ना भूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई इंद्र लोक शिव लोक कह जैबू पूछे तप कर बहुर ऐबू क्या मांगो किस थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाउ सोभा राज बिभै बढ़ियाई अंत न काहू संग सहाय पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन ब्रह्मे तउ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण तार मूंड बलाई हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्बासा से करत ठगा।

गाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नामो, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर न आमन पावो, अमृत बाणी घट ते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है सीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया मह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या परमो, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो क्रंक निस नाद बालहा।

आऊ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यो मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यो तरनी को कंत बालहा त्यो मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हरका बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हु ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर, मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै, हौ बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीमो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाऊ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सग

ज्योत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पो नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सम।

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथ री तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री कर्म कर कपाल मफीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मफीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दिया रा निर्मल बाती।

सतगुरु हुए लखावे धन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही रह रतन नाम हर बसिया।

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान डुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना, हर कृपा धार।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगाव हो मेरे ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया भुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिस हर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाउ तन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ।

हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइए सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जैत श्री महला चौथा सतसंगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार।

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लै लाहा, गुरमत पंच दूत वस आवह, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम।

तोल अत भारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कमन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै तां की निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

जैत श्री महला पंजवां घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुरु आज्ञ तजी सियान पचिंतव सारी भंग छोड़ियो है त्याग रहाव जाओ देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जौ संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाल।

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे मह दीप रहाउ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन, मनह चिराव हो धूप, हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे, दृढ़ कर गए।

या रसम है मगन होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवं कमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रिय।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे। प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारी। जय श्री महला पंजवां। आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूप ते। लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना। नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो। बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे। ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पाव। हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां। हर जन सिमरो हिरदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे। पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा। निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही। आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी। सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक। सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो। जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ। समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो। संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो। रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो। जन नानक भगवंत भजन।

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना तरीजे प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जिवैत संतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मूह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चितेहिया हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किस निशी छंदा यार वे तैरावया।

महामंगल रहस थिया, फिर दयाल साधना वरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सत संगिया, आसा मनसा सगल पूरी, त्रय अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई, जय श्री महा।

असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिय मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी कू

काड पव जल फेरिया सलोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाम नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ संत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याईए त्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाईए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों निवलाईए अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाईए बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाईए सलोक रे मन ता कौ त्याईए सब बिद जा कै हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभ है साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोय थान थरंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुण ताके क्या गनी भज सरन स्वामी सुखागामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत ना

कर कंपहै सिर डोल, नैन ना डीठिया नह नैन दीसै बिन भजन ईसै। छोड़ माया चालिया कहया ना मन है सिर खाक शान है। जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण, नह निमख मन मह वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया, चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे भजे श्री तार। कर अंग प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जय श्री महला पंजवां। वार सलोकां नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़िय साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं।

साध संग हर गुण रमहु, बिनसे सब रोग सलोक, कुटंब जतन करनं, माया अनेक उदम है,

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाउ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

सोह क्यों संजीए, तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीए, हर बिसरिए क्यों कृपतावे ना मन रंजीए, प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजीए, हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजीए, सलोक नाच राज सुख मिष्टं, नाच भोग रस मिष्टं, नाच मिष्टं सुख माया मिष्टं, साध संग हार नानक दास मिष्टं, प्रभ दर्शन लगड़ा सो नेहो, मन मजाहु रत्या विदड़ो सच थोक, नानक मिठड़ा सो धनी पौड़ी, हर बिन कछु ना लागई, भगतन को मीठा आन स्वाद सब फीकिया, कर निर्णौ दीठा अज्ञान भरम दुख कटिया, गुर भये बसीठा चरण कमल मन बेदिया, ज्यो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु, बिनसे सब झूठा सलोक, त्यकत जलं नह जीव मीनं, नह त्याग चातरक मेघ मंडल है, बाण बेदंच क्रंक नादं अल बंधन कुसुम बासन है, चरण कमल रचंत संत है, नानक आन नारुचते मुख दिखाऊ पलक, छड आन ना देऊ चेत, जीवन संगम तिस धणी, हर नानक संता मित पौड़ी, ज्यो मछली बिन पानी है, क्यों जीवन पावे बूंद विहूणा चात।

बंधावे त्यों संत जना हर प्रीत है। देख दर्श अगावे सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन है। नह बिसरंत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। सीतड़ा मन मजाही पलक ना थी वह बाहरा।

पिरहड़ी सच सियों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संतां संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करनं हर रमणं संजोग पूर्ण है।

परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक।

उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपौ भये मन टूट न आवै मूल संचिया नाम धन संत जना स्यो संग पाईए वड्डे पुन आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन्यो पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया ना।

0: दयाल गुर
1: गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी धन धन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुर देव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचया।

प्रसाद। राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह ना सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर न भवजन फेरा रहाउ। मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया,

संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी रहाऊ, ऊच समाना ठाकुर तेरो, अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी, रोग सोग दुख जरा मरा, हर जन है नहीं निकटानी, निरपो हुए रहे लिव एक है, नानक हर मन मानी, टोडी महला पंजवा, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहां ब्यापै, जाको ओट तुहारी रहाऊ, बिन सिमरन जो जीवन बलना,

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन सरम कीनो।

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां, कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवां सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सू

सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहू ते छूट है पव जल जगत तरायण खोजत खोजत तत बिचारियो दास गोविंद परायण।

थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को इक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे

सरन परे दुख पंजन जा का बड परताप तोड़ी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाव खोजत खोजत बहु प्रकारी सर्व अर्थ विचारे साध संग परमगत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

दरिया टोडी महल्ला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायो गुरमोह।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो।

आयो रे। महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ेओ, नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले परास्त मिट्यो रे। जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा घर पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अर अंग रोग। एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिखियाते। गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन, रूप अनरूप मोरो कस ना बिचारियो। प्रेम गहियो मोहे हर रंग पीन, पेखियो लालन पाठ बीच खोए। अनद चिता हर खे पतीन, तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये विस्म।

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ। गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपुरा भेट्यो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काड लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गही।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारा।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

नहीं कबहू होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई कह नानक अब नाहे अंत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ पंडित हुए कै बेद बखान मूर्ख नाम देव राम जान कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै पैसर मातै सींग गो देवल मदे लीग आसै लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपै तिस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेठे स्वामी दुख हों मैं रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो कि

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं

पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हिच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कसनीस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगो।

दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए, रहाउ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत अनेही, सर्बे परमल करना, के पट पांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होए, तेरे नाम निवे रहे लिव लाए, नानक तिन दर पीछिया पाए, तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एह तन माया पाया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों

कामन नौ निज पाई अपनी कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए।

गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराई दिल कब्ज कब्जा कादरू दूजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाई जब अजराइल बस्तनी तब चेकारी बिदाई हुआल मलूम कर दूं पाक अल्लाह बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा पलंग घर दूजा।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू, तेरे जन देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाउ। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम।

करी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आई दे।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी कलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूट।

जागले कहां गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ। मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना, जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना। जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो, नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो। काल पास जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

शरीर कर्म करीम का वो करै जानै सोए। नाम देव जी मैं अंदले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मशकीन, तेरा नाम है आधारा रहाउ। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाऊ तू देहांद तू बिसियार तू तनी, देहे लेहे एक तू दिगर को।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहै।

रहाउ कोठे मंडप माड़िया पासो चितविया टटिया कामना आवनी विचों सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मांझ वसन कोट कोट जिया खावने बग्गे ना कहियन सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलान से फल कामना आवनी ते गुण मैं तन हन अंदले।

नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट है जेत सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंग है वेहला ना सरवर ना।

साचा खसम हमारा सूही महला पहला जिनको भांडै भाऊ तिना सवार सी सूखी करै पसाऊ दुख वसार सी सहसा मूले नाही सर पर तार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाऊ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना भीखिया जां को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै तां कै बोल साहिब नदर जिस।

जोगनाथ ईसद संतर भवे जोगनाथ तीर्थ नहाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेट है।

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढूंढाई सत संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेले हर पाई सूही महला चौथा हर कृपा करी मन हर रंग लाई गुरमुख हर हर नाम समाई हर रंग राता मन रंग माणी सदा आनंद रहै दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाणी रहाउ हर रंग को लोचै सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मनमुख मुग्ध नर कोरा होई जेसो लोचै रंग ना होवै कोई नदर करे ता सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै सूही महला चौथा जिहवा हर रस रही अगाई गुरमुख पीवै सहज समाई हर रस जन चाख हो जे पाई तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मरार मनमुख हर रस चाखिया ना जाई हौमै करै बहुती मिलै सजाई नदर करे ता हर रस पावै नानक हर रस।

जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाई। पुछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाई। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करे हर कीरत निमख एक गाय। पतत जात उत्तम

खत्री ब्राह्मण पेठ दे छोड़े हर नाम देव लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख अठ सठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हर हरा दिया जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे तिस हलत पल

इशारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचिय पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटिय होरत है होरत उपाए हर तन किते ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हलत पलत हर तनै की भगतां को मिली वडियाई। हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा। इहो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है। किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी। जम जा गाती डंड ना लगाई साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया। तिना एक विख नाल ना जाई हलते विच साकत दहेले पए। हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई। इस हर धन का साहु हर आप है संतो हो। जिसनों दे सो हर धन लद चलाई। इस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो निह

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जाप।

ज्यो धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यो नानक साध जना जगत्यान सब पैरी पाए। सूही महला चौथा। तू करता सब किसे आपे जान है, क्या तुद पह आख सुनाई है, बुरा भला तुद सब किस सूझै, जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है, बुरा भला तुद सब किस सूझै, तुद भावै तिवें भला वह रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देव है, एक मनमुख धंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख। जे ही तू नदर करह तेहा को हुवै, बिन नदरी नाही को भेख। तेरी वडियाई तू है जान है, सब तुदनो नित त्याई।

अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रूप गवाई ते मुक्त पये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पये।

त्रै गुण रूपी विच हों मैं कार कमाई जिन किए तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूझी पाई हों मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी

तुझ श्रेष्ठ सब साजी कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै इकना सतगुर मेल तू बुझावै एक मनमुख करह से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ।

महला पंजवां कीता लोड़ है सो प्रभ होए तुझ बिन दूजा नाहीं कोए जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर निकट वसै नाहीं प्रभ दूर लोक पतियारे कछु ना पाइए साच लगे ता हूं मैं जाइए जिसनो लाए लए सो लागे ज्ञान रतन अंतर किस जागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ता आणहि रास कर कृपा अपनी भगती लाई जन नानक प्रभु सदा त्याई सूही महला पंजवां तन सुहागन जो प्रभु पछाने मानै हुक्म तजै अब मानै।

पंजवा ग्रहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहा गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिझाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया।

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बेदही अरो तीरै निमानो मिल साजन हौ तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता।

पई नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले झागी, हिन रहन ना पावू बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

पिंड सब थारी लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कौ हम बारी रहाऊ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी तुम

सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेख ते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जै, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किश पाई जो

तामह वासह भगत प्यारी सहज कथा प्रभ की अत मीठी विरलै काहू नेत्र हो डीठी रहाउ कह गीत नाद अखारे संगा ऊहा संत करह हर रंगा कह मरन न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोज कथा एह गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारी भेट तसंग इहो भव जल तारी ओए साजन ओए मीत प्यारी जो हम कहो हर नाम चितारी रहाउ जा का शब्द सुनत सुख सारी जा की टहल जमदूत बदारी जा की तीरक इस मन है सधारी।

लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निदान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा घट घट अंतर तुम्हें बसारी सगल समगरी सूत तुम्हारी तू प्रीतम तू प्राण आधारी तुम ही पेख पेख मन बिगसारी रहा अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारी ओट गही अब साध संगारी अगम अगोचर अलाखे अपारी नानक सिमरै दिन रै नारी। सूही महला पंजवा कमन काज माया वडियाई जा कहो बिन सतबार ना काई इह सुपना सोवत नहीं जाने अचेत व्यवस्था मह लपटाने रहाऊ महा मोहे मोहयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा ऊचते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे अपारा दूसरा।

का भांडा, हथ कुचील मिलै जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महा गर्त मह निगरत जाता।

पुण्यवा जीवत मरे बुझे प्रभु सोई तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उच्चरिया रहाउ एक बिना दूजा नहीं जाने काट काट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किस करे सोई पाल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी जा कै हृदय वसह मरारी सूही महला पंजवा गुर परमेश्वर करने हार सगल सिष्ट को दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाव पव जल डूबत सतगुर काढ़े जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर की सेवा करो दिन रात सुख

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पेखो हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बलोद मंगल।

पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभु चरण कमल रे दमाहे निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभु कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभु अपना करिया तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

राम आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे पाज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत परन पोखन संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए।

आस हर सेती राते राम रसायणे अन दिन माते बाहां पकड़ प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवां संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की पासी।

कृपाला रहाऊ, कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जप नाला, नानक जाचे संतर वाला, सूही महला पंजवा, किस बिन

अल्लाह पंजवा दर्शन को लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराई रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जिह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निध पाई।

रहाउ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहोर ना फिरिया।

सरनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महादुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध कुपाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए।

सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर ध्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूटै संतो सागर पार उतरी जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ कोट तीरथ मजन इशनाना इस कल मह मैल प्रीजै साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर सिउ

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ। अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई। परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवां जब कसना सी।

बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याई तेरी गत मित तू है जान है कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी कर्म

आऊ चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन कौ बल जाई अमृत बचन हृदय उर धारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े अवर ना कोई जिसनो लाए लह सो लागै

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई।

सिद्ध पाई। अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया। भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावे प्यारा तैर वेसी। सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जीओ, विण नावै भ्रम भुलिया।

ना बूझह आपना, से पशुआ से ढोर जियो, नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चेतना आवई, फिर लगे हैं दुख जियो, सुख दुख दाता मन वसै, तित तन कैसी।

सै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझ हर जाए शब्द कमाई है।

देही होवग खाक पमन उड़ाई है, एहो कित्थै घर औताक महल ना पाई है। देहो दीवी अंध कोर कब महाई है, गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जोत दी पाई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रह निह काम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम वसार, अहन सत्याई है। जो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम लखती टोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना। जन्मत

किया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख वे।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए, अठसठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाते मल जाए।

साच रखा उर तार, मिलिया हुए न विछड़ै गुर कै हेत प्यार। फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार। मनमुख मन न भिजई हत मैले चित कठोर, सप्पै दुध पी आईऐ अंदर विस निकोर। आप करे किसे आखियै आपे बख्शन हार, गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया शिंगार। सच्चा साहु सच्चे बन जारी उतै कूड़े ना टिकन, उन्ना सच ना पावे दुख ही माही पचन। हम मैला जग फिरै

आग्या धरी विचों आप गवाए खिंचो तान बगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहिरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपज सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल विण नावै नाल ना चल सी

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर सिउ केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानिय है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटिए अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुखे को बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पह आप बचाई दर्शन हर देख

गुर सलाहिया उठदिया पी गुर अलाम। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ता के धुआ पाओ। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलया हर पाया मिलया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस

आद मध अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत न पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो, तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी,

जियो, तू सहु अगम अतोलवा, हौ कह कह कह पयास जियो, क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन भूख।

लाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देहो बता।

त्रिपवन कंतरवै सुहागण अवगण मंती दूरे, जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहे आपर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण, रांड ना मैलै विस्ते। नानक मैं वर साचा पावै, जुग जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाए हम पी मन्या, सोहरे बलराम जियो। साहा हुक्म रजाए सो ना तले, जो प्रभ करे बलराम जियो। किरत पया करते कर पाया, मेट ना सके कोई। जानी ना उन्दरे ने केवल, रब रहिया तेहो लोई। माए नरासी रोए वछुनी, बाली बाले हेते। नानक साच शब्द सुख महली, गुर चरणी प्रभ चेते। बाबुल दितड़ी दूर ना आवे, कर पेय बलराम जियो। रहस्ती वेख हदूर, फिर रावी कर सोहिय बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी, मत पूरी परधानी। संजोगी मेला थान सुहेला, गुणवंती गुर ज्ञानी। सत संतोख सदा सच पल्ले, सच बोले पिर पाए। नानक विछड़ ना दुख पाए, गुरमत अंक समाए। राग सूही महला पहला, शंत कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम कर साजने आए। साचे मेल मलाए, सहज मलाए हर मन पाए। पंच मिले सुख पाया, साई वस्त प्राप्त होई। जिस सेती मन लाया, अन दिन मेल भया मन मानिया। कर मंदर सोहाई, पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सोहाय कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावहु हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारु जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारु तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही।

ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुर महली घर अपने सो भर पुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला पा जंत अनहद बीना।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुल्ले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, गुरमुख हर फल पाव हो, गुरमुख फल पाव हो, हर नाम त्याव हो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विट्टो हो, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जाप हो, सुख फल हर जन पाव हो, नानक कह सुनो जन भाई, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज सुपाय, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाय, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आई, दह दिस पूज हो हर जन की, जो हर हर नाम त्याई।

जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावह तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हों मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे। शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता।

कब आप मलाई राम। गुरमति घट चानन होआ प्रभ रब रहिया सब थाई राम। प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया। सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी सच सिंगार बनाया। कामन निर्मल हमें मल खोई गुरमत सच समाई। नानक आप मलाई करते नाम नवें निध पाई।

शब्द रवहु, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावह नारी, अनदिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आए, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी, जिन मन वसया से जन निस्तरे, घट घट शब्द सुमाणी, तेरे गुण गाव है सहज समाव है, शब्दे मेल मलाई, नानक सफल जन्म तिन केरा, जे सतगुर हर मार्ग पाई, संत संगत सिउ मेल भया, हर हर नाम समाए राम, गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये, हर कै नाम लिव लाए राम, हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए, मनुआ रत्ता हर नाले, सुखदाता पाया मोह चकाया, अनदिन नाम संभाले, गुर शब्दे राता सहजे माता, नाम मन वसाए, नानक तिन घर सद ही सोहिला, जे सतगुर सेव समाए, बिन सतगुर जग भरम भुलाया,

सुहागणी हर जियो मरै न जाए राम, हर जियो मरै न जाए गुर कै सहज सुभाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल, गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिर रावे अपना, जिन गुर चरणी चित लाया फिर पायड़ा बालड़िए। अनदिन सहजे माती राम, गुरमती मन आनंद भया तित तन मैल न राती राम। तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए अनदिन रावे हर प्रभ अपना। विचो हो आप गुआए गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वडियाई। प्रभ रावे रंग राती।

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी।

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई, पंच मेले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया उज्जड़ पंथ भ्रमे गावारी, खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाई जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए, हिरदय धन ओ माहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन बजी वधाई, जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई,

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुरु गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

स्वामी सर्व रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बड़ भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंडिया फल

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, भये पवित शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निसतारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाए, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कहे सोई पर कीजै, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया। व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। एनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवे रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावां जे प्रभ पावां आपे लय मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावै चोटां खावै अंत गया पछताया। बिन नावै को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

गर्भ भगवानू निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिया भौजल तरिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानू नानक सरन पया हरिद्वार हो बल बल सद कुरबानू सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिन्नी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा।

मनुख नासे रहस उपजै मन घना मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भना होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धारहु सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया।

वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा भज जगदीसरै राग सूही संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक।

जाकौ नदर सरम दे मनमुख पूली बौती राही हाथी माया फंदे ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही।

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिंह।

ऐसा गुरु वड भागी पाईऐ जित मिलिया प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइय प्रभु ते आईऐ बहुड़ जोन ना आईऐ गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाईऐ हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर

हर गुण निधि हर संतन कै वासे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा धारी। सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी। जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो।

सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अविनाशी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम, हर अरादे जम पंथ साधे, दुख ना व्यापै कोई, जल कल मही अल पूरन।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अवनासी करोड़।

वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया कर्म है नवनिध भरे भंडारा।

सगली तप्त बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महियल सोई जन नानक प्रभ की सरनाई तिस बिन अवर ना कोई मेरा घर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाईया।

मते आए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नास्ती शब्द सवारे सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अराध है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे है तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाई है जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद

आवी काल सुहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद रिध दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़ आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट

अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काली, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पव जल

प्राण अधारु गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जियो तां चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वड भागी हर हर गाया।

सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संवाहेंदा तेरा हुक्म नराला आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला। श्लोक महला तीजा सुहबता सुहागनी जा मन लै है सच नाम।

फिर मैं झूठ सब बिनस जाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

परहर हो लाल कर हो शिंगार आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हम मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां ए ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन।

0: हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हउमै मार मन निर्मला हर नाम पुरधारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्या
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन फिर मन मा

अमृत मूल रस भोजन भाव करे तन मन सौंपे कंत कौ तौ नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजै पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हो मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सुहना भेटिया कृष्ण मरार पौ भाव सब तिसदा सो सच वरतै संसार श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर।

भारी कबह न पावे मान पौड़ी काया कोटर चाहया हर सच्चे आपी एक दूजे भाई खुआयन होमे विच व्यापी यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापी जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर

ना जपहु कमन मत लागे, मर जाए बे कहो क्या करो अपागे रहाओ। दुख सुख करके कटंब जीवाया, मरती बार इकसर दुख पाया।

दिन पी जाई, पवर गए बग बैठे आई रहाव। काकै करवै रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया माने बाज पतारा। काग उडावत पुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लेऊ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी। एक ना थाकस माया।

देवहु जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मे बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा।

पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया इन्हो लिया उभारी रहाओ नौ डांडी दस मुनसफ धाव है रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापह नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम ना काई।

सह की सार सुहागण जाने, ताज अभमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपाखे, सो कत जाने पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

सांझ परी दह दिस अंधियारा कह रविदास निदान दीवाने चेत सनाही दुनिया पन खाने सूही ऊचे मंदर साल रसोई एक घरी फुन रहन ना होई इहो तन ऐसा जैसे कास की ताटी जल गयो कहास रल गयो माटी रहाव भाई बंद कटंब सहेरा ओए पी लागे काट सवेरा घर की नार उरह तन लागी ओहो तो भूत भूत कर भागी

ललत बेड़ा बंध ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मैं मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावां देव जाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाउ, जो किछ होआ सब किछ तुझते। तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब। मैं अंधले क्या चतुराई, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

जहाँ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

अलख अपेओ रहाओ, माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार।

रही मन साचै तारिया, अवर न सूझै गुर को वारिया। नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला। गुरबचनी मन सहज ध्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी। मन मुख परम भुले बोरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। छिन सत गुर बूझ बुझाई रहा, मेरा प्रभ बिसरै हो मरूं दुखाली। सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जानी गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाई। प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाई। हों मैं मेट चलै गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़ै खोटी रास। गुरमुख नाम मिलै साबास, हर कृपा धारी दासन दास। जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिउ। जित हुण खसम

दया पथ दाता क्या एह जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाली।

आप सराप कसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए, माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब मह एक समाना, सतगुर पर क्या हर नाम समाना, जिस कर्म हो सो सतगुर पाए, अन दिन लागे सहज ध्याना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभमाना, जब अपनी जोत खिंच है तू स्वामी, तब कोई करो दिखा विखियाना, आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी नदाना, ज्यो आप चलाए तिवें कोई चाले, ज्यो हर भावे भगवाना।

आई चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाई मंगल नारी गाव है आई मिल प्रीतम सदा सुख पाई हों तिन बलिहार जिन हर मन बसाई हर जन को मिलिया सुख पाइये हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे त्याई हर जीव आप वसे मन आई आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाई निज कर वासा हर गुण गाई रंग चलूले हर रस पाई एहो रंग कदे ना उतरे साच समाई अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाई पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हों मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर न काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरन को समसर वेख बहुड़ ना मरे ना जम पेख घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवां, सर्ब कल्याण किए गुरदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाउ सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जिते किते दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बिलावल महला पंजवां। सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण।